दुखी ब्रह्म न कोई एक घर माथी दलित्री थिए बालक तीन पुत्र उनका आपू दुई दंपति सला।

आए फेरी वरुण जी दृढ़रूप धारी, पूजा करे निरपति जे गरी भक्ति बारी। विनती करे वरुण को सवदात आओस, यो पुत्र यज्ञ पशु लायक हो जाओ। दात नृदिन छैन बलि भनेर, देखिन्छ शस्त्रहरूमै कुरा सुनेर। यति भनी वरुण घरतिर फर्की आए, राजा खुसी भइन्वार नगर नलाए।

का शब्द को चौरासी आता घूमने मानव को छोला पाएंगे तो बहुत मन पाएंगे।

कस्या माता कस्या पिता कस्या भाई कस्या श्रीमती कस्या छोरा कस्तो धन सम्पत्ति केही लानु छैन नारायण।

0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कानून के साथ श्रृंखला शुरू सुदामा की नारी करच दिनदारी विपति पति चाई विमति कर चिंता पिटले गुरु देवता राजा अरुप भला मानस का निदान खाली है बंकन कहीं ज्योतिष मन देवी के सौगर मन देव चंगा कर चौधरी का हर्षित मुलाकाम करने इच्छा वर्तन में विचार मुझे तंबू जमा कर दी सही तंबू ली गए प्रयोजित पूछे द्वारिका मा
1: नारायण
0: जनो बालक ओ जनो बालक ओ जग

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: ब्रुम ब्रुम
1: उकालीमा पनि हजुर मोटर जाँदो रहेछ गिन्तान।
2: हत्तेरिका फस्यो यार फेरि हत्तेरिका।

अरे अपनी फेरी आवेर भाई, मेरी प्यारी बुढ़ी, मेरी मुंह चुनकिरी बिचारा अलसम मले बात पर ही बसी गोले मो बजे कस्तो खत्म गरे तिले जार जगर माते राग फुक्क मले इला ओ पुछिया मेरे बुढ़ी बुढ़ी बंदा रिसले ओ डार्लिंग आई लव लव आई लव यू माय सातो पुतलो फ्लाइंग आफ्टर सी यू अंग्रेजी बुझ्दैन तले देखेर सातो पुतलो उड्छ भने